एक्सेस अन्य गहर्ज का साथ ही इंटरनेट ऑनलाइन को www.rvdharan.org मार्फत संसार भर के साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 9 बजे को खबर में म वेकको नमस्कार खबर को सुरमा मुख्य मुख्य खबर अगलागी पीड़ित परिवारलाई मदन भण्डारी फाउन्डेसन द्वारा सहयोग हस्तान्तरण धादिङका तीन विद्यालयमा विद्यालय तह

0: एक टिकमो आइटिल ब्रांड का मोबाइल हरू घड़ी साउंड सिस्टम डिसोम पंखा तथा संपूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामान हरू पाइनु का साथ ही पुरानो मोबाइल लिएर नया मोबाइल पनि साटिन्छ।
1: त्रिमूर्ति मोबाइल हाउस धादिंगसी मिलनटोल लेकाली टिकट काउंटर संगई प्रोपाइटर ईश्वर श्रेष्ठ संपर्क मोबाइल नंबर 9841063130 र 9913180307।
2: समुदाय का लागि समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ज।

0: Reliance Finance Limited वित्तीय सेवा को और को परिभाषा
1: समुदाय का लागी समुदाय का आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ज।

0: उद्योग होइन ढुक्को हुँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स के अभिकर्ता बनाऊ
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड
2: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।

0: एनिमल लाइफ इंश्योरेंस खुले राजियों
1: समुदाय का लागी समुदाय का आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

0: California Extreme Energy Drink.
1: समुदाय का लागी समुदाय आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

0: मधुमेह, सुगर रोग, थाइराइड को समस्या, मंडावरी को समस्या, भिटामिन बी को समस्या, कैल्सियम गड़बड़ हुने समस्या। थप जानकारी तथा नाम दर्ता को लागी जेएस फार्मेसी तथा दीपमाला लाइफ केयर सेंटर धादिंग सिधारी। संपर्क मोबाइल नंबर 9841063240। यो महीना को 22 गते डाक्टर आउने हुन्छ।
1: समुदाय का लागि समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ज।